मंगता रसी ओइनाम स्वामी कुमार की खुंदिलदा एलांगम नाउचाना सिरेवा मतमसी सेगी सेहुदी कपले नंगी नोंजू हिंग असना

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अमुक लौबिरसि येनसेम्बम बिट कुमंतिम प्रकाश ने सैरेंबा असुमने सैहौबा मोलांखादा लुन्ना थामिबी मतमिसे यसि अमुक लौबिरसि खुदो तंजरी।

समुराई लाइटवन सकपनोट योगी बे स्ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल मथंगदा अथोपम गोपेशो नखोंबा बासी अमुक लौबी रसी।

0: at hitabi ri akaswani imphal hauzik ayuki pungni panta delhi dagi rileda hindi da amadi ingrazi pau amadi silong dagi rileda ni
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: रमुआ पंखा का बिल छोड़ा, बिजली का बिल तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यार बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया तब से मीटर की सुई भी चैन से होती है। और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली आज ही रजिस्टर करें PM Surya Ghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के G7 कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने

0: रेनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में जाएंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी, इसके स्पष्टता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझी रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रकार जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है। भारत क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा वैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार विभाग में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ETF के निर्यात शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ETF निर्यात शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिमोस जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत प्रबंध है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये होर्मुज जल डमरू मध्य को 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर तैयबा मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप

0: दौरान वायुसेना के लगभग 30% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेगा पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनुकुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसमें रोक लगी है। उसके साथ साथ वहाँ से जो इलीगल ट्रेड हो रहा था वो बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे उड़ाने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटना सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना दायक एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम, शांति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आले क्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट में मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वो जिन्ना शानदार खेल दिखाया, स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अपने भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्मरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नहरी विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रित किया है ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.free.in

0: इन और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज रूप से खोलने पर सहमति बनने का समाचार पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका स्वदेशी मणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मन पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार विश्व रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद है। तो लिखता है किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्य उड़ाने शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मौसम लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक की खबर है। पत्र लिखता है देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। अन्य पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द, 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा।
0: पाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यो में सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62 LNG के साथ होर्मुज जल डंप मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में विश्व कप में बड़ा फेर करते हुए के बड़ी टीम बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही सा समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross First Class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Evian, France today. To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha carrying 62,370 metric tons of LNG cargo safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also set up a 1-1 draw with Egypt. Of Slovakia, Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the Government and the people of Slovakia's distinguished honour.
3: As a special gesture,

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे

0: कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह यह तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
5: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
6: 15, 14
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
6: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
6: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
3: क्या गिन रही हो?
6: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
6: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: हाँ।
7: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉनसे, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
6: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
3: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
6: Only 4.
3: मेरी तरफ देखो।
6: सू, only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
6: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
6: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ, हाँ।
6: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
6: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं। और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉनसी?
6: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
6: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
6: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉनसी।
7: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
2: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
7: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
2: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
8: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
7: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
2: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
6: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
7: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
8: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
7: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
6: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
7: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
6: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
6: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
7: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
6: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
6: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
6: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
6: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
6: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ
6: हाँ,
3: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
6: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
6: हाँ।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
5: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
6: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
6: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
6: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
6: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
3: हाँ।
6: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
6: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
6: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी,
9: मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
6: क्या?
9: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
6: क्यों नहीं गिरा?
9: हाँ,
6: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
7: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
9: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
6: पेंटिंग?
9: हाँ।
6: कैसी पेंटिंग?
9: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
6: ओह, तो वो पेंटिंग है?
9: हाँ।
6: असली पत्ता नहीं है?
9: नहीं।
6: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
9: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
6: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
9: हाँ जॉन्सी,
6: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
9: हाँ, उन्होंने बना दिया।
6: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
9: हाँ,
6: मास्टरपीस।
9: हाँ,
6: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
7: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: राम लक्ष्मण पूर्वजं रघुबर सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सैतं संधं दशरथतनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणीलक्ष्मणे धनवी वामे तो जानकी शुभा पूरतौ मार्तिजस्यातं नमामि रघुतमं रामायो रामचंद्रायो रामभद्रायो वेदसे रघुनाथायो नाथायो सीताये पति नमो श्री सदाशिव महादेव नहाय ताओ दश भुजे दुर्गा सात कांड रामायण हाइन खन ग्रवा कांड तरेतना संपूर्ण अरवा रामायण की वारी दिने दिने नुंती नमी खुदिंगमक नंगी नफमदा ब्रनुन ओरक पसी मसीना उतरा कांड हाइन खन ग्रवा इरु इलु इब कांड दो मधुगी मनुंग दुदा श्री रामचंद्र रघुकुल मनीना निग्थौन पालेब अयोध्या कोनुंगदा अगस्त मुनि लेंगकतना अगस्त अबहा मुनिदो मधुमक्तना मथंग मथंग वरी लिरकपदा ताबगी पेनब कौब लैत्रब प्रभु श्री रामचंद्र रघुकुल मनीना अगस्त मुनि बुयेंगदन हे महामुनि नन ऐगि फमदा महामुनिना दिने दिने नुंती नुमी खुदिंगमकि लेप लैतना वारी मथंग मथंग लिबिरकपसे मसीदा रामगि पुंगनिंग शंका सिंगब मदि मरै रे शंका सिब अमुक्तंगदि कोहन बियुदो हे महारसि ज्ञान पुनमग्ना तारबा भूत भविष्यत वर्तमान कौब काल मखल मसक अहुम मुन्न खंगबिरब महामुनिनी नाय राम की पुंग सिंगर इब सिम तंगी अमुक तंगी कोहन बियुगाबाइदना अगस्त मुनि की जगाद हंगचर बदा अगस्त नईबुंगो हे प्राण रघुमणि ऐबुंगो की पुंग करी शंका ममुक लेरी बगे अये फमद मुक्त दे ताक पियु हाइदना अगस्त मुनिना अदुगुम लवा श्री रामचंद्र रघुकुल मणि की मफमदा तिल्लिब पात्र मित्र पुनम की ममांगदा अगस्त मुनि न हंगत चै हे महामुनि नना ऐन ताजबदा विश अदुंगलब जगत ख्या तुन फाउरबा राबोन कुंभकर्ण हाइबसे मपा अम खक्त की मसानी हाय मरु अमना मरु अमदगी थोलकपा सार न तोंगान तोंगान न थोलीबा हाइबदी राबोलेबसिन हिंसा बनी दो कुबेरा हाइबसिना जय खनि दो मरुदी अम खक्तनी सगै न तोंगान तोंगान न लेरी बसिबु कमदों न लेरी बनो मसिनी ने रामगी पुनिंग सिंगरी बसे बंगो हे प्राण रघुमणि आई मुई सिंगना बदो कोक नबा आई वरम पुमदो हंगत सगे दना पुलुस अदुंगलो बत गत ख्यात न फारव अगस्त मुनि न हंगत से ब्रह्माय बसतुर मुखे ममाई मरी लोंग बल्लाय सिस्त्री कार्त उरीबा जगत की जीव कनागी जंतु जीव लखा मरफू मरी पुनमक सेंबीरी साबीरी अदुगुम लबा ब्रह्माय बल्लाय हे मसीगी मसानी पानी पुलुस्तो हारी बसी पुलुस्तो इसम जम्बा ब्राह्मण नते मपागुमना जगत की ज्ञान पुनमक लेरेबा पुलुस्तो मुनि मतममदा महाकना सनजिंग अब सिंग अदो मधुगी सिंथकता फजाघरब तपबोल अमगी मनुंगदा महाकसे लाइनिंग ले पुलिस्तो मुनिगी तपबोल अदन फजबदी कयाद फजघरगे हाइबबू सात खिरब ले हाइब जासे मसिना मतमनी मतमनति थिरुब लेतना फुगाई फुगाई न साले हई कया सिंह से मसीना ममुन फान फान पालेर गैयादन लेब बनांतर की मनुंगा लेब उसे ओया क्या की नुशीरब खोजे न पुनिंग हुबा सात खरीब लेदी कनागी जाति कनागी जूति कनागी तगर मालिका सेफालिका हौड़े सनारी कुंडाले न खन ग्रवा मिफम होंब याद्रब अदुंब तपबोनी दो भजगरब तप बोलद्र दिबानी से नुंती नुम खुदिमकी लाई नुपी मयाम लागतना मफम मधुदा फज्जबदो येंब लाई कनागी गंधर्वी निंगोन कया लागतना मफम मधुदा फजबदु येंब लाई मयाम दुगी मरक्तगी सक्त सूद हेलबी सद्गत लेबी रंभा तिलो तमाम पुंगम जबी ममिंगना सयंबरा हैन कौबी इबीएम अमा माक सुनुते नुमि खुदिम की पल्लुस्तो की तप बोल सिद लाई खेक न लाउ न खोंग ने इसई सई चोंग फंद न जगोई साय महा के खेक लाउबगी जगोई गे अहोब खोंजेन मान जगोई सरगपगी नोपुरगी रुनु रुनु झुनु झुनु झन झन हाइब शब्द सिना पुंगनिंगनी लोंगदना वखल चोइब हाइबदु लैते मखै तपै सा तौरी बा पुलिस तो मुनगी ध्यान से पांग हेत काइब ngasii sima hau ghare no ngale adumak liepa leitana muni na dhyan taura leringi matam adumak tada trina brinda haina kaupa brahman ge masanu pi ibe mas hayambar se laagtana laogdana khongdana isai saktana kanagi chongdana phandana masida jagoi sharakpa maduna maram oire haraga pulisto mahamuni asawun luton sad khare महापापी ने इकाई देबी नंग न दिबानी से नूती नुमी हे हेकला एरग आई ध्यान बो थुगाई जरब साय आई तोपु नंग न मतम पुनमक तम मंगहल लबस मंगहन जब साय अदु ओइब थारबदी ब्राह्मण गे असाव बसे मसिबु नंग न पोहल लबनी ना इकाई बन आई देबी नहा कसे ngasi अब नुमित गी युम्बान मरी लैतना अदु लबी नाउपु बिए दु ओलोक ओइरोको गिरास्ता धर्म संगदना नहाक असे गटबगी लेखोल ओइबी हाइबदु ओइरो मपा मसक खंगदना मामा हाइबदु ओइरो को सपन तो सापीगी ब्राह्मण पीरीब सपन तो साप अदुदा करी सुन असुंग लेते खेक न लाउ न खोंग न जगोई साधना नोमक मरे चोंग दना फंदना मागी नोपुर की रुनु रुनु झुनु झुनु जन जन जन हाइब खोंजे लदना अमुक कसु हेना मुनि की थमुई द असाव वोई द पोक हितना महापापी नी लंकेट पी आई गु मन गांग मो वाबु नंग न मतम पुन मक्ता थवई दबा आई की वाबु नहन नासुंग दबा अदु वैब तारबदी इकाईब नाई देबी नंग से ममा वैब की अमृत इहौरो कन्या ओइन ओइन अमृत इहौबी हाइबदु ओइरो को सपन तो साप तौरक पदा सयंबर कवी बी एम गे अदुगुल पक्कस्थल मंदले अदुगुल अमृत कुंड अनी दुदगी भगरिति गंगा ने हुरपगी मतंगुम पिच्चकारी ने कामगी मतंगु अमृत सेमसिन फिरी फिरी फिरी फिरी फिरी कामक पसेना शेली सारी बमागे आभरोन पुनमक्तो पुमलोप हेतलुप मसा पुनमक अमृत न सोलक लब काल दुदगी अदुगुल लबी सयंबर कवी बी एम राहु अब हिंचाबदो मधुना चंद्रो था कोबलाइबु ग्रहण नोबिगी मतंगुम अध मुखे मंग गसिताक लुकथर गमांगले ऐन तौरिब कर्म सिदि करीनो हाइदना इकाई घिबना ममाई थंगत पंगम दब मखई सयंबर कौबी बिह मदो मपाई बुंगो त्रिना ब्रिंद ब्राह्मण गे नाग तसेलकले मपागी जगाद लाक्तन कपलरे मांगले मांगले प्रितदे ननायन खंगे रुद्रपदी ब्रह्मागी मचानी पा पुलस्तु की ध्यान तपै शाबु थुगायुरे असाउन लुतोन सात क्रब पुलस्तो ननायगी में फमदा अकीब की मसक फंगलब सापन तो पीने वीरे ने प्रतदे ननाय ऐबु कन्या ओइने ओइना अदुंग लबी गडबबती है बदु ओइरो ओइदना सापन तो सापी वीरे कुमारी ओइबी ऐबु ममा ओइबी अमृत दो मदना तांग थक नाय ने हुर लेने प्रतदे नचाब करी उरे सिगवाय दना दुंग लबी सयंबर को बीबी मदो मदना मपागे चोरोन को लग हिक ने हिक ने कपले रे मतम मदुदा जगत तमसा अनुषिद बजीव कना ले बगे बासल के प्रेम मसाग प्रेम न थुमत लब त्रिनाभृन्न ब्राह्मण मांगले मांगले पागी भी मा स्वयंबरा
1: nangta we pa na ne mi tha ye mai matam ne yeng ja bani nu pa nu pi sak nei pa na nang mu tham ja ba magun na maha samadra we ra ba polis tu gi ma pham na nang na ta hoi da ba ku karm lang mu du mu du na mara mu du na nga si di kai phiru khum bai ba do i pai sa na samaj as gi ma mang na phang ga du ri lao ipagi tungilau polis tu gi mo choro na hang cha ru si e da na मचाई भी अमा सयंबर कौ भी दो पूरे गलाक लेने त्रिना वृंद कौ ब्राह्मण पुलुस तो गी चोरों न सैशु गी मतंग न तूर रे नमो नमो महामुनि ननाई त्रिना वृंद गी अपराध पुनमक नाक पीउ पंजर भी सा कन्या गी अपराध पुनमक पोंगाक पीउ ने महामुनि महाशय नंग मुकानानो इफम द लाक लग सैशु गी मतंग न तार न दंड बट कलरीबा kari lamda leibano naming na kari kaubagi haidana pulus to mahamuni na hangat labada. Namo namo mahamuni. Nanay man manam trinabrinda brahman kauji. Giri pura kauba jagadu da nanay ay yum lay jabani. Maang dilip libi se masina nanay ay isyanu pikanya sayambara hai viduni. Muni gi asyum labas tapabol gi manunga. Muni na hai vi indaba makai khe laudan jago isyaghi bi. मतम पुनमक्ता अदुंग लेबी सई सखी बी ईशा कन्या दो मांग दे लेबी बिसिन ngasi di sha kanya se muni gi sap ti lem na mang ba ban ti do ut nang na pi oi ro hai ba ut na na pi he to on mangam ba na pi nang ut o lo hai ba su na pi he to on mangam ba adung la mang phadra ba brahman gi sap ni machina mara murad na sha kanya se mama ui bi gi gad ba gi le khole ba du hoi re दसमास गडबदारोन था तरा गडबगिले खोल वरे बतुं दस दिन में तरानी सूर बदस क्योर बिकुप तला सुरगल बकाल शागी गडबदले बांग आंग सिन ममा के गडबदगी उदु वेरगल बकाल ईशु असिन नो नो मगी चरगल बकाल मा बुपु की जन्म माता ममा की जगा दे मा ननाय बुपुक जन्म पिता शिव कनान नंग बतम ला ईशु नम मपाम से खंगुई दौड़िए महामुनि पंजर भी शा कन्यान सु मपाम सक्ता पंगमुई दौड़ी ननाय ऐन जगत जीव पुनम न तानरि बसे मसा हब लल शिव तानरि बसे बु कोनो लागी कनागे दमक्तनु पुंग अब नोरो कदो बु इराय लाइन लान थोक पंगमी हब गि दमक्त मचा नि पाबु जगन्नाथ पुत्र हाइन कौनरी बनी पुंग एवरोगदो मन बुइराय लाइन त्री लान थुक पि हबिगि दमक्त मचानु पि पुत्री कौनरी बडी जगत तपोक रब मसा पुनमक असे मसिगि लमल लम तंग हाय बलेय बतार बदी दस कर्मा ममा मपा न तो भम थुक मसा गे कर्म तरा लेरी बदुगि मनुंडा इरोय लोय ब कर्मा मसानु पि भूमति क्षाब दान पात्र कन्या दान तो न कटपगी अदुंग लब कर्म दो ननाई त्रिना ब्रिंद नहंदकी मपो कसिद फंगलोई दौड़ी जगत जीव करानी शा कन्या बुलो भी नबले रोई दौड़ी महामुनि पंजर भी शा गया अपराध पुनः पुंगाक पीरे रगा ननाई त्रिना ब्रिंद बुनुंग शिबिरे रगा शा कन्या से महामुनि की सहधर्मनी उन्हें लोक्षण भी हो दो ननाई अवाब से अमुक तदी कोहन भी होगा बाहर दना अदुंग लबत्रि नाब्रिंद ब्राह्मण ब्राह्मण पुलिस्तो के चोरोंड भक्ति कलरबदा फरे फरे त्रिनाब्रिंदा नंगी संज वही ताबद अगि पुंगी अपियन वैदु ओयरे नसा कन्याघि हयेंग तुंग इकाई पिरु खुमन नबगी दमक अगि सहधर्मिनी अगि गृहणी ओइन अइन लौसल लबनी को सिंगनब लैरनु को आइदना अदुंग लबि मसा नुपी सयंबरा को बि इबे मसे पुलिस तो मुनि की जगह आधा विवाह दान तौदना

कलई मपुर बगी मफम न लंग जगी व पाप पुनमक तो कोक्ष न बगी दमक पति बरता ओरबी सयंबर कौबी बी मना संध्या हम धुप थमई कली मपुर बगी पूजा गे पोलम हई लई थी बद पुंग लुपी नुपी ओबगी अथोब धनमदी जगत लैरब देवता पुनम के मनुगे खुआर अथोब देवता गे मनुगी मपुर हबसना थोबने अदना वेद वेदांत न लाउन रि मपुर बगी मंगोल ओनगी दमक तने हाई बी मा चंद्रायन बर तक कली दो चंद्रायन बर तक कदाई बु कौगी नोम पानब सदम पचावनी नि पाम सदम मनी पचाव अहम हमनी पानब सदम अहम चाब मरी नि पानब सदम मरी चाब मंगा नि पाम सदम मंगा चाब थबान सदम मसिंग मथंग मथंग चारकना पूर्णिमा नुमित सदम तरावा चाब पूर्णिमा नोम कौनब कांदा तरह मरीद हंदरप तरह हमद हंदरप तराईद हंदरप तरह मथुद हंदरप तरह हंदरप मपन हंदरप निपान हंदरप तरत हंदरप तरुकता मंगाद मरीद अदूलब इरोब नुमित अदो मधुबना पूरा सरा हेंटोपू चंद्रायन बरत थाम चुन बरत कटप है कवे नुपी पर्त से कच्चरबी मागी मबुदो मधुन तौजरीब कन्म पुनम तो मही याले चाखलीदमता इबीएम सयंबर चंद्रायन बरत कच्चो एकादशी बरत कच्चो एकादशी बरत है हादसे लेरंबरा लेरंदे कईदूबदी एकादशी बरत लेगी ममाद ब्रह्मा मी सेमे लाई सेमे हिंसाब सेमे जैक सेमे रईक सेमे दैक सेमे दानोब सेमे गंधर्व सेमे जीव लखा मरफू मरी सेम से लोरब कांडा पाप कतना तारब निपाम सेमे ममिंग न करी कौई पाप पुरुष कौ पाप पुरुष सरब निपा सिरी पाप की थबक तौरूब निना से अफाब हबदो अमत ओद्रे कनागुम माब तीनिंग्रे कनागुम माब तोन निद्रे पा पुरुष ना कभी मथब तौगे खलुब कानदा मांग अनिब पुनम से निब कायर मतम ब्रह्मा की नाक लाकन वखल अरे इबुध ना अब सेंदना इथने तौनीब फाव लेद्रे पा मतना तारबदी हेन सेमने मरम इथ तौनी लेद्रे ना अब कईदौजेदना ब्रह्मा की जगह हारबद से पा पुरुषा थाम की मनुदने एकादशेब दिल लाकनी मदईदने नंगने अदूलब एकादशी निमित्त जीवन चनरीब चेंद चाक हवाई चेवाई घीद थाद थम करीद कराद नंग चंद्रेको हैब कना कनागम सिंगने चारूरब थौरब अब तारबी पाप की थबक तौब गमदब नंग से चाब थब निपा नुपीदो मधु मसाद नंग फन चोल पाप नंग थबक से तौब है उजौको है नो अब एकादशी बरता एकादशी निमित्त सहीदे थाहीदे बरत कने तौ सुमदन सयंबर कौबी इबे मना मपुरब की सेवाद अपराध मचे भाव लेते मपुरब की सेवा ओरपद पेंबी हईरब अदूल मपुरब विश जगत ख्यात फौर पुलुस तो इबेमा ममाद नंग सौद खजिक नंगों सपन तो साब नंग नपुरब निब की मतौ नंगी नुपी होबगी अथोब सजी उरुबद पुनी अपेंबद फंगजगदरीब नचा से जगत मिंगचावनी पा सोदनमी नचा से मपान सगे पुनम चौखलगनी मतम पुनम नहा की पुनी अपेंबद कृपा पीघी सुमदना सयंबर कौबी इबेम से था तर तरानी सूरब तुम दस किलोमीटर तरह सूरब काल ममा की गर्भद अगाम फंजरे फंजरीब अगांग से कनानो अदूलब जगत ख्यात फौरब विशस्रब है महामुनिदुन विशस्रब फंजरे विशस्रब ब्रा अदूलबनी फंजरब कान मचा की तौफम थोप जात कर्म की थब कना की सोची पूजा कना की नाम कोरोन कना की अदूमलब हेक लेरब कर्ण भेद कना की चुरा कोरोन कना की अदूमलब विद्यारंभ तोान तोान मथंग मथंग तरोकना उपनयन सिंह लांग खोटपन से लोरे मयूम पान मकई पानी की तंजा से लाब काल भरद्वाज कौब महामुनी से मसीन करी खली इचानुपी लता कौबी से कनाद थाजरगदी मतिक चाव दान पात्र ओयने
이샤 까냐기 먹군 시가 하잉 아이나 타저르고도 이막 아두가 먹군도 사나람 더버 따르버디 단 파트다 마틱샤다 범이다 단 톡신 바 따르디 다타 아피바 미마학 아데 순노록 타이 하이나 베데베 단트라 라우리야 아이 샤 까냐 라타 하비 시부 카나다 타저르가 마틱샤바 단 파트라도 오이게데 게나 수막 칼럭버시다 한덕 불루스토기 마사하니 팝 Magun Lagrava, Bissasrava, Brahman, Nase, Masim, Pam, the Isak and Yadan Kalagadia, Sukso is Widena, Upper Dan Patra have the Uregania, Matichava Dan Patra, the Uregania, Dana, Set the Suda Award Pago will later be, Berdoazi, Masanupi, Ibiama, Lata, Hibise, Kanya, Dan Togdena, Kalei Adunlavilata, Kobi, Biamasi, Bissasra Brahman Giseva, with the Lady Kiba. Lagi nungdam kanan tamangangani, aji kali nungu nungu haugibana, lata kubi ibiyama, mama ibige garbagi lekholo ire, dasa din, dasa kiol, dasa maasa surak ladana, mama I garbadala iba angang adun hek, udoi oirek pakala da, angang ado kana oire, haujik, jagat puna mangangang na riba, kubira, haiba, dalan sampatigi mapu oi hairiba, Kubirasini, bisa serabagi masani pak, latagi garbadagi pupa. Matam madu madu da, kubira wal nipamritagi athoi ba. Brahman gi masa, bisa serabagi. Mahagna, adukum lava sahi lisingama, subna, mana barta upasana kali. Tapai satawi, sadi, thakti, tumdi, hipti, tingdhaung matunda pagpalli la bhagvatangdi. Akan matapai satapungning luptra leghe. Matam madu madida, PNB hairava brahmaha kubalaya sila eraga. Jejejeje kubera, nangi, adung labat tapai sada aige pungningi apien maidu oire bunga. Nasana niruba leitana, aina ne, nangu shiva kubu leitrava, azar omor padabiedu pirabani ko, kripapi. Adung labat brahmahana borasi hek pigibaga, kanagi, mai, ising, nungsi, jom, Indra, Punamak, Latana, Magi, Mapum, the Mongol Arsibar Pigi. Jagat Kyati, or in a power of a Mokstrok, Noba Kanga sing the singba, Manika Pusperta, Haina Kanagrava wrote, Apai Bido, Madumasu P, Aduga Luna Lunana, Jagat Kyati on a power of a Sakti Leraba, Mahaki, Adum Labat. Mahaka said, Dullan Sampati Punamaki Mapu, Habadunang Nasi, even Mitagi Ojeroko Sumdodana Kubira Hibernipa, say, Lagi Kripa Pangana Omor Padavi Panga Ledic Labakan Mana Mukari Kale, Ay Punamakudi Lady Babu, Ay Lay Pumse Natay, and the Sadi the Ko Kanagi Zagada Hangusik and a Sum Kalakwada Pare Adu Batara with the Abu Pupa Ipa, Bishop Srabagi Zagada Hangura Gedana Kubira Mapai Bumo Bishop Srabagi Zagada Lakana Hangasai Pretade Nana Punamakiti Lay Jerry Hibabu Lay Pongi Kudung Sada Amatang di Mare Yea Nana Bukadai de Lay Juga Hibigay Punga Sejejejejeje Mamang Hida Adugun Laba Hinsaba Mayamna Palamba Hinsabana Bishakarama Kobul Lai do Paraga Puraga Mapam to the Sing Hiba Lanka Sana Lanka Hibado Hogjikti Hinsaba Mayamdo Patan the Loy and Kina Siena Grabani Lanka Lai Baxi Hang Hang Laba Ying Mripum Humba Yadraba Sanatana Saraba Sana Lankani Salo Hide Ba Sana Lankado, Madudane, Nanning Nakatam, the Lejeruro, Panjeruro, Salo, Hide, Kubiri Gizagatam. Mani Pusperak Tahana Kanagrava Adumba Road, Mokstrok, Overkang and a Singba, Ning Tizagava Adumba Sakti Kagi Horopom Wereba, Zagat Chatu in a power of a road Adutung Erega, Gandarabagi, Adumba Zakagi Ningto, Kubirasi, Lanka Levakta Palade. Hai ne humna awat apale itana saning badasa sining badaset sanagi lupagi manigi muktagi rutungi awat pamatale itamgi nungai ne palakli basida patanda bisnugi sakrana kakani haibadgi kidana patanda luli bahingsa amayam sinne khanaya asai hai akoyne wane sengwa charamba lasana lankani ko inung nungai ghi magi kubira isina low grenesya sana lanka haibisina di Bisesarva Brahmon Mapa, Sigilamu Benina, Masana, Mapagis Hoto, Pangabani, Hogjikti,
아이쿠이기 람세 아쿠이나 아무나 방어로이더라. 깜도르가 사나랑까지 행사비 구다뭉땅 다시 다나와 혼내시게 되나. 행사범에 얌지 왔다나를 빠간다디. 말레발 해보도 못하는 거리 하리. 행사범은 막다비요. 마파기 소토디 마사나 방이더나. 하우젝시다 까리 금보다 아이쿠이나. 저 우파에마 떠오르래가. 비제 서버 브라함훈기 자가다 아이코기 힝샤비닝올 아마 타자라바 마기 거버디기 거룸 앙앙 아마 폴럭 바타르디 마두수 비제 서버기 마사 오게 도리바니드나 아두이 바타르바디 마파기 소토디 마사나 방가다바니나 아무 랑카지다 마무르 헨바수 야이나 아두디 카나불레 헨시게 하이디 힝샤바 마얌제 비사르 솜 동너럭바 마타마시다 마일바나 하이나 강나그라바 힝샤바 세마시나 제제제제제제 아두에 바 타랍디 아이기 샤누피 마색 마토 파제비 니코사 하이비세 마학세 마기 자가라 타자라시 아두디 이샤케 냐세 마북 파나 보코미암 템젠지고 오이다나 바기비에 마니 코사 너무너무 프리타디 나나이나 샤부 코비바 이샤디 군다 마하사티 사비트리 군마니 석타 서거들의 비람바틸로 타마군비니 사게이 간게더 마스 샤닝올리니 낭디 힉샤보 뿐나마낭가시 파탈보본달리립세 아이코이 레닝들 레이비나티니 파기비에마 사게이 시기 만마르 잔낭나 칸다바 야드레 아두나 살로 나학살레르가나 비세스르바 브라함훈게 펌다 아이 아세 브라함은게 세바세피 나나이 오이제게 나나이 아이 이펌다 푸트라 다한토비유 이샤피나비오이드나 나학니루라바 करिगुम्बद भी सब ब्राह्मण का या भी दना नंगे गट बदना सा धारा ले रब दी ऐ कोई पनमक से अमुक हन्ना अदुम मुक्ति है बुद्ध फंगदोरी बने या इपाना है भी इल्लु है दना मस्सा आई भी मनी को सागे मफम नतामी नमो नमो प्रितादे संसाद ले बम मस्सा आई बकाना ना मापागी लमन मक्त बुशिंगे ने होना जब मतम ना मपागी भूमति चिंतामणि बुपूर्ग पृथ्वी गंगा लखा मरफुमरी लुपुदन सु मपागी लमन सिंह मंगम देव से वेद वेदांत न लाउजरी सगई बु कन्मंगंगनी इपान बु सकोटकने हाइब लेब तारवदी धर्म धर्मी ये अरो इ पापुई ने थिरो इकाय इकी थादुगे सलगे ननाय हाक अदुंगलवा फाउर व बिसे सर्व ब्राह्मण ये मांग अइले उरगे देना सक्त सुदा औट पगो बले इत्रबी ये मने फम होंग ब याद रबी सद्गदले बिरम भाति लो तमा गुंबिया निकोसा इकाई इकाई लातना लजा इकाई भी है बदु ओइरे रगा बिसे सर्व ब्राह्मण ये मांग चाप लेपले वागी मसेल मत गांग रे मखई तुमेन लेपत्र लेई बदु उबदा बिसे सर्व ब्राह्मण ने बेमा नंग नंगसी था थाजदना बिसे छरब ब्राह्मण लेगी नाक त लाग लेब दरिबु सिबु नंग पुंग नि अपाम करी लेबगे अपाम बदो हायु हाय दन बिसे छरब ब्राह्मण ने को सागे जगार तमक लवला ने को साना गुरुदेव नानाय ऐ संसाद लेरिबो पुरुष जाति सिंह से कना बुसु ऐगे स्वामी इपुरबो ऐगे न खंदे दो मतिक चादव स्वामी ई मफम ना ऐसे आत्मा समर्पण करके न खंजे दे मगुन सावरवा शक्ति के आना तासिल्लवा हे ब्राह्मण न थोए बिचस्रवा नंगी न फम न ननाई ऐगी पंच प्राण प्राण मंगा आजे कचरगे महामुनि की कृपा आदगी ननाया हक से पुत्रवती मामा है बुद्ध वैहन बिहु ईशा धरा पीने बिहु ने हे बिचस्रव ब्राह्मण बेमा नुंसीदा न वही न पावो ताबदी ऐगी पुण्य अपियन है बुद्ध वैरे मरम मधुर नंग असी अब नुमिसे मसीदगे हौर दना ऐगी सेवा चटपी इनाय है बदु ओ जरो कौ कृपा पी ब्राह्मण की सेवा ओई दन लैरक पसीना आजी काली नोम नोम हौगी बसे मसीन मरम ओई रे हाय रे रगा अदगुम लब जगत ख्यात न फावर बा ब्राह्मण न थोई बदन करे हाय बे माला नंग नंग असी ऐगी नागता बोनी बलाक मतम छे असित अवा था हाइबदि महौ लांगपुके मतम ओइबनी नन्या पोलक कदरिब नसा सिंगदो मदुदि महौ लांगपुक पुगदबा मिवा मिसा तागदबा नाकों वाई सिंगदब नसा हाइबदु ओइगे दौरी नसा हल्लदु मदन मरुल अहुम जोई तौगनी नसा निपाया मदो जगत तमाग मानन साउ बमाग मानन कन्म कनामत लेरो नसा निंगोल कन्याम यावगनी मान मरम ओइदना सिंगचाब सगई तुंग दौरी नसा निपाई तोन तोन मम याउग दौरी
마디 단마 강가니 사스라 강가니 고르존 싱기 세바 마탐 주빠다 뽕링 룩가니 마트는 사

वेस्टर्न म्युजिक ताविरे थरम सदोक र तहान सरी बजे आकाशवाणी फाली कंगला चैनल दगिनी हाउजी अमुक लांथोक सरी सगनाय रे बसंगी वारी ngasi ge sagnai re basingi wari da pudran lakshari prithivi gi football gi ning thauni haina khangari ba pele gi sanappa punsi wari pele asing ma ma ba na thon bi ba mingna etchan arantes do nascimento brazil ge apik pa sahar tres coracos da kumjal isma sa pa ni foki october kulhum doi da foki masa ge sahi tra manga surap da brazil gi football club santos da sangtuna sahi tra ne pan surap da World Cup ta saruk yaar ki emasu 1958, 1962, and 1970 ki World Cup ta saruk yaar tuna champion oi bengam ki. Santos Football Club ta sang tringi da mahaak lairaman badagi sa yon ba amadi khungup sengwa ki thabak toro ki. Football bo aduki batik paamzera basu masa ki football ama phaoba lai bengam da bana. Nobab amadi siyena matum tasinduna kao basa na duna masa ki football ki career semla ki. Sa yon pamdagi prithibi ki pambak yorok pa. नवाब तक सनागे फुटबॉल ओ रखीबा पेले ब्राजिल की दी तांग लबल नमने पेले ग मानव गम सानोर एमत फुटबॉल की पुआरी द लैत्री ख्वाइदी की सही नौना वर्ल्ड कप याउबा वर्ल्ड कप अहम लग याउदना अहम लग तुमक चैंपियन ओइब गंबा हैट्रिक फंगब गंबा अमदी मैच लिसिंग म सहुम हुम फुम दोइ सानखीबदा गोल लिसिंग म सनी हुमद्रा मापन जन बंगमदना महा की रिकॉर्ड थमली महा के सिंग ममिंग एचन अरांतेस तो नासिमेंटो मिंगसी मरुमदा वारी लेरी महाक पोखीब कुमददा महाकी लैकाइद इलेक्ट्रिक बल्ब इहानान योरखी इलेक्ट्रिक बल्ब पुथोखीब थोमास अल्वा एडिशन की ममिंग लौदना एडिशन हाइन थोनखीबनी अदुबु बनान सोयबदगी इच्छन ताखीबनी अमसुंग ब्राजिल ओइनदी ममिंग सान थोनबसी सनबी अमसुनी महाकसी पेलोला नेग्रा हाइबदी ब्लैक पर्ल अमुब मुक्ता अमसुंग ओरे हाइबदी द किंग निंगथौ हाइन सुखंगदना ब्राजिल गी नेशनल हीरो ओइकी फेले अफब गोल स्कोरर अम ओइबतनतना अफब गोलकीपर अमसुनी महागना सानरी बा संतोष फुटबॉल क्लब की सब्स्टिट्यूट गोलकीपर अमनी क्लब असिना सानखिबा ऑफिशियल मैच मरी द महागना गोलकीपर ओइदना जर्सी नंबर 1 लितकी अमसु महागना गोलकीपर ओइबा मैच अमतदा महाके मायोक्ता गोल सनमंगमन खिदे गोलकीपिंग इन नॉलेज मपुंग फना लैबा सिना ओइबताय गोल स्कोरर अम ओइदनबगी अफब मरम तसेनव महा खोंगी सुपरस्टार अम ओइबत नतना खुद की सुपरस्टार अमसुनी फुटबॉल के अफाव सानरो एम ओइबत नतना फेले शांति की पाउजेल चेन मंगम बाता अम सानरो एम सुनी 1969 दा महा की फुटबॉल क्लब संतोष ना अफ्रीकन फुटबॉल टूर सत के मसिदा अफ्रीका के लेवाक सिंह कोंगो नाइजीरिया मोजाम्बिक घाना अल्जीरिया नसिंग बले बाक सिंह सिदा एग्जीबिशन मैच सानकी जनवरी कुंतरुक 1969 दा नाइजीरिया के लागोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाइजीरिया की टीम का सानना बगी दम फेले याव संतोष की टीम थुंगलखे मत मधु नाइजीरिया द सिविल वॉर यान कर्म मत मोखे नाइजीरियन लगा अमसुंग वाई फ्रांस की मरकता पेले याव मैच ये नबगी दम मियान होप्सी नरक पदुदा सिविल वॉर अदुन अकाइब पी द नबगी दम नकल की मरकता अन ऑफिशियल सिस पयार मपुंग निफुनी फारी कोई नसे नखे मसिमक मतम दुगी अफ्रीका की ममी चबा पाव से सिंह दा ऑफिशियल ओइन फोंग खिदा बसु मियान नदी खंगनखे पेले की खूब मरी किशिन बगी याम नुंगायरब वारी मसु लेरी कुमजाले समसापन हुमद्रागे फिफा वर्ल्ड कप फाइनल दा ब्राजिल अमसु इटली सानबदा ब्राजिल ने इटली बु 4-1 द थोइदन चैंपियन ओके मसु फेले ने गोल अमसु सनके कबसगे पेरु अमसु ब्राजिल गी मरकता क्वार्टर फाइनल मैच अमद मैच हौद्रिंगैदा महान रेफरी द के याब लौदना फिल्म याय द महाकि बुद मरी किशिन के मतमदु खूब साबा कैंपेन सिंग मरोइना एडिडास नाइक प्यूमा याम नकन कॉम्पिटिशन तौनब मतमनी नमितु महांगना प्यूमागी खोंगु बुद्धोंखे टेलीविजन येंगलीबा स्टेडियम द लरीबा म्यू मिलियन कयागी ममांग द महांगना सेकेंड खरदा खोंगु मरी किशिन बगी सक्तम द उहनखे प्यूमा कंपनी गी असिगु मार्केटिंग स्ट्रेटेजी असिगी द महांगना मतम दुदा डॉलर लाख अमल सिंह हुमुद्रा हौजगी मतम द लुपा करोड़ हुमुद्रा पेले न फंखे मरे बापु नुसी जब मिसक अम ओइना महा ब्राजिल गी पॉलिटिक्स द खोंगदा खे प्रेसिडेंट ओइना न बफाव होनखे असुक फॉरब सानरो यसना ब्राजिल गी टीम कैप्टन अमुक खतम ओइखे कुमजाली समसाफ नंबर पुद्रा मरी दा ब्राजिल की स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओइना साना खोनब बुहेना खुमांग सौसिन अब होना बदा सो होदांग लौखे हाइन बले पृथ्वी दा फाव बनी खले मदुदी अमना अमेरिका की कोका कोला अमना ब्राजिल की पेले असु फाव के बसाना रोय पेले की पुंसी के लोरम दाई मतम दा
ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯐꯨꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯆꯠꯂꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣ ꯄꯍꯦꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माईगॉव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
5: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

0: दोस्तों, आज कार्यक्रम में पेश है महफिल और आज आप सुनेंगे कुछ सूफी गीत। तो सुना जाए ये पहला गीत, वैसा भी होता है टू, फिल्म से कैलाश खेर की आवाज़ में, विशाल ददलानी की शब्द रचना को संगीत दिया विशाल शेखर ने।
1: टूटा टूटा

अब सुना जाए हिंदी मीडियम फिल्म से आतिफ असलम की आवाज़ में अगला गीत। प्रिया सरैया के बोल को धुन प्रदान किया सचिन जिगर ने।

दोस्तों, पेश है राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में फिल्म पाप से अगला गीत। अमजाद इस्लाम अमजाद की शब्द रचना को धुन प्रदान किया शान ने।

कंगला चैनल में प्रसारित कार्यक्रम महफिल में सुना जाए अमीर खुसरो की शब्द रचना और पारंपरिक संगीत में बनाए गीत, राजा हसन की आवाज़ में फिल्म हीरा मंडी से।

दोस्तों सुना जाए अगला गीत फिल्लौरी फिल्म से रोमी और पवनी पांडे की आवाज़ों में। अन्विता दत्त की शब्द रचना है और संगीत सहारा शाश्वत सचदेव ने।

दोस्तों, हनीफ शेख के गीत और संगीत में सुना जाए मिक्की वायरस फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, जो होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत भी।

सुलभ कथे खानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऊर्जा नी लोन स्लो कने ऊर्जा फर्टिलाइजर है कबम बाय बाय मे डिस्ट्रिक्ट सख चलोनी लाउरोय मिनोन द कट्यू थामेस ना ऊर्जा फर्टिलाइजर चबा बजर खाओ बेग खट खाओ दंका फाइव दे रेड कचत तिबम खाओ सब्सिडाइज रेड खाउस ना दंका फाइनल रिमो खंग तिलोपनी डिस्ट्रिक्ट गोय खाओ जनप मेतान ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रि जाउसुइ ना जालो खंग सिम मिनिस्टर खेमचान रि साकन थे मणिपुर टों लेबोन वाईफाई ले कुंसाखुल कैलोंग कांपुपी डिस्ट्रिक्ट कन्हई दान खाओ तमाय कामना खौरी कब्यू कन्मे गंथोम त रिम्स हॉस्पिटल खौ रजा खंग तनमे सिक्योरिटी रुई तिंगे लोना देवरा नु कुंकई मित तै नु मगे दुना मथ्यू दुना नुन रुई तन्न द गुड मेतान द तै सिक्योरिटी फोर्सेस रुई टेरगेस कनी स्मोक बॉम कापना थौरा लोकन थे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट खनी हाईवे मिनिस्टर पोप नितिन गडकरी रुई नेगा क्रोर सिंथुम फाइनाइ रुपदै पकैलना मेघालया खाव नेशनल हाईवे कथन खनी कथन पदै खनी नेशनल हाईवे कन्हाइ रुई अपग्रेड सुखंग दोलानु टाउलिंग दिं कैलो कंथे शिलोंग खाव लंग पक मै मुंग खाव ते दैथा मै फुंगोंग ने मै तियांग क्युथु चेंग ट्रांसपोर्ट पावर खनी कम्युनिकेशन ने तुना कटकारी रुई सलो कने कमुंग खाते मेघालया चीफ मिनिस्टर कॉन्रेड के संगमा डिप्यूटी सीएम प्रेसिडेंट टिनसोंग बाय बाय मे मिनिस्टर्स खनी ऑफिशियल्स गोय कोंगलो कने नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एक्सीबिशन 2026 खाओ नागालैंड चीफ मिनिस्टर पोपने फ्यूरियो रुई डाला नोंग लसालना ट्रांस नागालैंड हाईवे फुटव्हील रोड सेंग हाई करेट तीलना तिकाय थालों में रुई स्टेट बैंक थु रुई इकोनॉमी ग्रोथ तान खाओ सेन बकाई में तिबू थालों अंपनी तुना साकन थे सेंटर ले असम रुई पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन था पुंपत में खांग एमओयू नी एमओयू सोइस लोक में ते सतो पलना विकसित भारत 2047 तोंग फाइकाम नागालैंड रुई तगुदबा में खाओ इंडस्ट्रियल लीडर्स खनी डेवलपमेंट पार्टनर्स गोय रुनी सेन पकाई लो खांग त्रिपुरा स्टेट खाओ इंटू मई टोंग एडुकेशन तिगाय थाव खंग खनी इंटू मनुन लुनलुंग तिगाय थाव खंग बाय बाय मितान सिंथाव पनि थे तना त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक साहा रुई साकन थे अगरतला खाओ लाख पटकमय मुंग अखात खाओ चीफ मिनिस्टर रुई साकने वर्किंग वुमेन तंता मे टू मनुन खंग हॉस्टल फाइखद्रु बुना कसम थलो दपनी थे इंटू मिनुन नखंग टॉयलेट पिंक टॉयलेट नी कबम बाय बाय खौ कसम थलो पुनी क्लास 9 ग्रेड 12 खौ चंबा मई इंटू मई स्टूडेंट गोय खंग बाइसाइकल साइकल इसाती पुनी मैना हमना स्कूल सिंगा पाइसने चुइसने खौ चंबा मई क्लास 9 ले 10 इंटू मई स्टूडेंट गोय खौ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग नी तिलोपुनी तना डॉक्टर सहारु साकने फीफा वर्ल्ड कप 2026 खाओ दोलानु पलुप कन माई रई मेस वर्ल्ड कप खाओ गुद कन माई थियम माई केप बर्थडे रुई कंगम नाइ मे स्पेन द 0-0 खाओ दिदिंग लो कन थे केप बर्थडे टोंग गोल कीपर भोजन हा कटिंग कुम्रेक दई द इम्बू लाइन करम पलुप दई रई लो कने कहु खाओ पलुप का मैं बेल्जियम ले इजिप्ट नी अखट अखट गुलना ग्रुप जी मैच शटल स्टेडियम खाओ खाओ थोलो कन थे चम में डॉक्टर गलो थे कतंग खाओ नाइब थे नुने ना कपाक गो मैं फ्राइ मी खाओ सना नुलो देखो रोजिना रिस्वामी लू हेलू तनुने ना कपाक गो मैं रुई रगाई लोंग इम्फाल खुरी ककुसुंग चुरामणि मीना मुकुथेलु खनि ककाई खुद मेगोय नो दिखाऊ

आकाशवाणी इम्फाल संदोक्सरी फिल्म इसई मतंग मतंग होना मणिपुरी फिल्म दा बॉलीवुड की मामिंग ले रहा सैसक पर सैसक पिसिंग ने सही किया कुदौल तंबी दुना टॉप टॉप पर महा ओम बीबीरी हाउसी अधिक उम्मीद से खरीदन कुदौल तंजरी आहान बदता भी सी लाइव वर्क फिल्म दगी प्रिया भट्टाचार्य ने सक पिसई सैरिंग बा एन डेविस सो सैरंग बा ओके नमक चंग

ताबिरे माधवी फिल्म दगी उदित नारायण सुपीसई सेरिंगबायल बंक शर्मा सयांगबा सकल सेम तिजेंद्र कुदो की मरी सुबद लवीरसी कृष्ण अला जीसस फिल्म दगी कविता कृष्णमूर्ति सुपीसई सेरिंगबा सनातोनी थौजा सयांगबा कुंजोय कुमार।

구독자를 베타비르시 레이 아마 프론데기 사데나 서감네 쇼페이세이 세링바 사나토닌 타우자 세량바 사골 샘티젠드라

शास्त्रीय संगीत की खुदौलता बिरी खोमद्राम सुनीता अनुसर खयाल राग हम साधुवानी विलंबित एकताल द्रुत तीनता आकाशवाणी पाल हौजी संदुक्सरी अदोमना पोस्टकार्ड की खुदांग खन बिर फिल्म सिंह मथंग मथंग होना अहानबदता भी बेस्ट फ्रेंड फिल्म दगी पुष्पा रानी नुसर पैसई सैरंग रोटिका सैरंग लाई जितें खन भी कोंपाल खादम लेकाय गिरीजा सुनी बला मेनका थाजमान भी राशेश्वरी।

ताबिरे अटियागी मीनो फिल्म दगी रणबीर थौना न सपैसे सरेंब दोनेसो कोंसम सरंगब जी सुरचंद्र शर्मा खनबिरब सिंदी कियांगे मखा लेकाय दगी राशे अवे सनाटोंबी केथेबी शांति बला अंजलि अमदी तिलोतमा मथंग लख फिल्म अहिंगी तंदर सैसली हुईद्रोम नाउ बोई सरेंब होमें दिवाई सरंग सुरजीत सिथि थाबिरब सिंदी बिष्णुपुर बाजार दगी मनी थोयबा केशो समानंदा थानिल ननाव अमदी इबोटोंबी।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 17 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का सदाबहार गीतों की ये महफिल जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उन चुनिंदा रोमांटिक गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है और इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदा। तो आइए आज की इस बेहद खूबसूरत सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म चरस से। चरस फिल्म के इस नगमे से जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब की और लता जी की, ये दोनों ही आवाजें ऐसी आवाजें हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गईं और हम सबके दिल में बस गई। इसी फिल्म का ये एक बहुत ही प्यारा नगमा जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

कि आजा तेरी याद आई। ये नगमा था फिल्म चरस से और ये फिल्म आई थी 1976 में। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था रामानंद सागर साहब ने और साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी था। उनके साथ थे वेद राही। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, अमजद खान, सुजीत कुमार वगैरह। और बात जब यादों की चली है तो याद तो उसकी आती है जिसे आप अपने दिल में बिठा कर रखते हैं, और ये वो शख्स बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शख्स होता है जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए उसकी याद बार बार आती ही आती है। और जब याद किसी की आती है तो फिर पुराने वक्त का भी जिक्र होता है, पुरानी बातों का भी जिक्र होता है, क्योंकि वो पुरानी यादें हैं, वो पुरानी बातें हैं जो आपके दिल के बेहद करीब थी। वो शख्स आपके दिल के बेहद करीब था जिसे आप मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि अब वो भले ही आपके पास नहीं है और वो आपके करीब नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको अपने दिल में बिठा कर रखे हैं। और शायद ये इसलिए होता है जब आपको इश्क होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, और वो इसलिए आपके दिल के करीब में होता है क्योंकि वो आपको अपना समझता था, आप उसको अपना समझते थे। तो ऐसी ही बातों के साथ, ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में, जिसमें सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए बेहद खूबसूरत गीतों को लेकर। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, जिसका नाम है फर्ज। और यह फिल्म आई थी 1967 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जितेंद्र, बबीता, सज्जन, आगा, राजा नाला, कालेश्वर राव, मोहन चोटी, मुकरी, कंचन, अरुणा ईरानी, डेविड अब्राहम वगैरह ने। इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो अपने प्यार का इजहार कुछ अलग तरीके से करता है, भले ही सामने वाला उसे माने या ना माने। आवाजें हैं लता जी और मुकेश साहब की। तो आइए वही नगमा हम आपको सुनवाते हैं फिल्म फर्ज से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में, सदाबहार गीतों की वो महफिल जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार इसके नगमों को पसंद करते हैं और बार बार गुनगुनाते भी हैं। तो ऐसे ही सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं, सदाबहार रोमांटिक नगमों के साथ हाजिर हैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। तो हर सिंगार की इस महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जिसका नाम है इज्जत, और ये फिल्म आई थी 1968 में, जिसका निर्देशन किया था टी प्रकाश राव साहब ने, और इसमें मुख्य किरदार निभाने वालों में धर्मेंद्र जो इस फिल्म में डबल रोल में दिखे थे, और साथ थी तनुजा, जयललिता, बल्ला सानी, महमूद, लक्ष्मी शाया, मनमोहन कृष्ण, मोहन शेट्टी वगैरह। और खास बात यह है कि इस फिल्म में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जे जयललिता की एक पहली और एकमात्र हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उनकी कुल मिलाकर दूसरी हिंदी फिल्म थी, इससे पहले उन्होंने मनमौजी में जो 1962 में आई थी मात्र 3 मिनट का रोल निभाया था और बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी भूमिका के लिए वो दिखी थी। ये वही अभिनेत्री हैं जो बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बनी और जनता की सेवा भी की, और उन्हें

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। नगमता फिल्म इज्जत से आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा अगली फिल्म से, और वो फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई। ये फिल्म आई थी 1980 में। इसका निर्देशन किया था इस्माइल श्रॉफ ने, और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राजेश खन्ना, शबाना आजमी, ए के अंगल, उर्मिला भट्ट,

गायत्री, सिद्धार्थ रे, पद्मनी कोल्हापुरे, देवेन वर्मा, प्रीति गांगुली, श्रीराम लागू, इस तरीके से बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में बहुत ही अहम किरदार निभाया था और ये फिल्म अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के गीतों को लिखा है गुलजार साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है खयाम साहब ने। तो आइए इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए हरसिंगार के इस दिलकश महफिल में।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे एक स्पेशल प्रोग्राम, और उसके पश्चात ठीक 11:40 पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी गीत मेरे मन मीत में। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
2: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
2: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो,

0: और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो इमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे, लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई एश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई एश का विषय हो, और ऐसे

0: अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केप टाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है इसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं, और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8,10,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं, और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है। और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए जी। और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो। हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉर्पोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉर्पोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉर्पोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपने इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:39:17 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम हाजिर हैं सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा आमतौर पर 1940 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये दौर 1965 तक का है। इस दौर में कहानी, संगीत, अभिनय, सामाजिक विषयों और सिनेमाई कला ने नई ऊंचाइयां छुई। इसे हिंदी फिल्म उद्योग का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। उसी दौर से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ चुनिंदा नगमों को जो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारे हैं। उन्हीं नगमों में से एक नगमा सबसे पहले फिल्म चोरी चोरी से, और यह फिल्म आई थी 1956 में, जिसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने और जिसको लिखा था आगाजनी कश्मीरी ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया नरगिश, राज कपूर, प्राण, गोपी, भगवान, डेविड मुकरी, राज मेहरा, जॉनी वॉकर, इंदिरा बंसल वगैरह ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी बेहद खूबसूरत फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा जिसे लिखा है दरअसल शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की।

लता जी और मन्ना साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में नगमता फिल्म चोरी चोरी से, और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। खास बात यह है कि शंकर के जयकिशन साहब को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया था, क्योंकि इस फिल्म के सारे ही नगमे बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत से, और ये फिल्म आई थी 1956 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है गीत मेरे मनमीत की, यानी सुनहरे दौर के उन नगमों की जो आपके दिल के बेहद करीब हैं और आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। और इस महफिल में मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। बात गोल्डन एरा की चली है तो गोल्डन एरा का जो दौर था, जो सुनहरा दौर था, वो बहुत ही प्रभावशाली बहुत ही खूबसूरत था हिंदी सिनेमा के लिए, खास तौर से जिसमें मजबूत कहानी और सामाजिक संदेश हुआ करते थे। गरीबी, वर्ग भेद, प्रेम, देशभक्ति और मानवीय संघर्ष जैसे विषय पर फिल्में बना करती थी और गीत फिल्मों की पहचान हुआ करते थे। तो ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं, ऐसे ही पहचान और गीत जिसकी बात हम कर रहे हैं, ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हैं जो अपने फिल्म के लिए बहुत ही अहम हुआ करते थे। ऐसे ही एक बहुत ही प्यारे नगमे के साथ हैं जो आपके दिल में उतर जाएगा, और नगमा है फिल्म श्री 420 से, जिसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आवाजें हैं लता जी, मोहम्मद रफी साहब और मुकेश की। तो आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, बहुत ही प्यारा नगमा जो आपके दिल में उतर जाएगा सीधे। और ये फिल्म आई थी 1955 में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और से बार बार आप सुनते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं और गुनगुनाते भी हैं। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत फिल्में बना करती थी और उनके नगमे उस फिल्म की पहचान हुआ करती थी और साथ ही साथ उस फिल्म के कलाकार बेहद महत्वपूर्ण माने जाते थे क्योंकि वो नाम ही था, वो कलाकार ही थे जो फिल्मों को हिट बनाते थे। उन्हीं दौर में उन्हीं कलाकारों ने अलग अलग तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाई जिसमें दिलीप कुमार साहब, राज कपूर, देवानंद, मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी, वहीदा रहमान वगैरह उस दौर में बहुत ही मशहूर रहे अपने फिल्मों के जरिए और अपने अभिनय के जरिए। और बात जब दिलीप कुमार साहब की चली है तो गहरी भावनात्मक अभिनय शैली के लिए वो प्रसिद्ध थे और इसीलिए उनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। तो आइए दिलीप कुमार साहब की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म नया दौर का अगला नगमा हम आप

सुनवाते हैं और ये फिल्म आई थी 1957 में। बी आर चोपड़ा साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म ने मुख्य किरदार निभाया था दिलीप कुमार, वैजयंती माला और अजीत जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नासिर हुसैन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर बल दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों तथा व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को इस वर्ष की विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और ये इसकी बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 45 टन चिकित्सा सामग्री भेज चुका है और जरूरत के अनुसार आगे भी मदद देने को तैयार है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसियन शहर के पास स्थित बर्गिन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnership, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters

सरगोशी करती हुई हवाओं के बीच चांदनी में नहाई हुई इस रात में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज अंजू आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मोहब्बत में न जाने कैसी अनहोनी हो गई और पता ही नहीं चला कब ये मोहब्बत हो गई। यूं पलट कर देखा मुझे उसने, यूं पलट कर देखा मुझे उसने कि बिन मौसम ही ये बरसात हो गई।

खूबसूरत हैं आंखें तेरी, तू रात में जागना छोड़ दे। खूबसूरत हैं आंखें तेरी, तू रात में जागना छोड़ दे, देखना खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे।

देखो ना, आता नहीं था हमें इकरार करना, न जाने कैसे सीख गए प्यार करना। रुकते थे न दो पल कभी किसी के लिए, और न जाने कैसे सीख गए यूं लंबा इंतजार करना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम उन्हें बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। चुप रहते हैं कि कोई खता ना हो जाए, चुप रहते हैं कि कोई खता ना हो जाए, हमसे कोई अपना रुसवा ना हो जाए। बड़ी ही मुश्किल से कोई अपना बना है, मिलने से पहले ही कहीं जुदा ना हो जाए।

दिल में रहकर दिल पर वार करते हो, क्यों ये सितम बार बार करते हो? तुम्हें पता है कितनी मोहब्बत है तुमसे, फिर भी औरों के लिए मुझे नजरअंदाज करते हो।

एहसास मोहब्बत के लिए तो बस इतना ही काफी है, एहसास मोहब्बत के लिए तो बस इतना ही काफी है कि तेरे बगैर भी मैं तेरे साथ

कहते हैं कि प्यार का असर जरा देर से होता है, और आपको लगता है कि हम कुछ नहीं सोचते आपके बारे में, पर हमारी तो हर बात में जिक्र ही आपका होता है।

आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर। फिर आपसे आपके साथ रहेंगे कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने

0: भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबे चंपा कोरबा थर्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 755 करोड़ रुपए है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में चंपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें पहले से मंजूर हो चुके मडवा रानी सारकगुंडिया सेक्शन को शामिल नहीं किया गया है। इस कॉरिडोर की पहचान भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और हाई सिटी नेटवर्क कॉरिडोर के अंतर्गत की गई है, जिनका उद्देश्य माल ढुलाई को और बेहतर बनाना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS राघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Evian, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnership, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitaya Sarvajan Sukhaya had led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that International partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, it is needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders, including Canadian Prime Minister Mark Carney, British Prime Minister Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his talks with British Prime Minister Keir Starmer, Mr. Modi said the past year had been outstanding for India-UK relations. In a social media post, he said the trade deal between the two countries has opened several new avenues for economic cooperation. He added that the discussions focused on further strengthening and adding greater momentum to India-UK ties. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In a social media post, Mr. Modi said the two leaders discussed India-UAE cooperation across various sectors and explored ways to further strengthen the comprehensive strategic partnership. He also expressed gratitude to the UAE leadership for its care and concern for the Indian community living in the country. Prime Minister Modi also met President of Kenya, William Ruto. Mr. Modi said that India and Kenya share a long-standing partnership anchored in the aspirations of the Global South. He reiterated that both India and Kenya remain committed to working together for the well-being of the people. Prime Minister Modi met Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Prime Minister Modi reaffirmed that India deeply values its long-standing friendship with Egypt. Prime Minister Narendra Modi also met Japanese Prime Minister Sane Takaichi on the sidelines of G7 summit. Prime Minister emphasized India and Japan will continue to deepen ties in diverse sectors with a priority on trade and investment. Prime Minister Modi also met the South Korean President Lee Jae-myung. He said that both nations are working together in trade, commerce and many other futuristic sectors. Today, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav yesterday held a detailed review along with Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan on crop residue management. The meeting also discussed prevention of stubble burning in context of air quality management in Delhi NCR. And that is the end of this news bulletin.

समय हुआ है 1:11 और 3 सेकेंड और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। तो चलिए आज चलते हैं गुजरे दौर के कुछ बहुत ही मधुर गीत सुनते हैं। मैं हूं अंजू आपके साथ, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म मधुमति से सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। जरा सुनो कभी इन खामोशियों को भी सुनकर देखो, कभी इन खामोशियों को भी सुनकर देखो, तुम्हें पुकारता है मेरा दिल हर सांस के साथ।

0: देखो जरा, चांद भी हैरान है हमारी इस रात की रौनक को देखकर। चांद भी हैरान है हमारी इस रात की रौनक को देखकर, जो गुजर रही है चुपके से तेरे कांधे पर सर रखकर।
1: ये रातें, ये मौसम।

हर धड़कन में बस एक ही सवाल होता है, हर धड़कन में बस एक ही सवाल होता है कि न जाने क्यों ये दिल तेरे लिए ही बेकरार होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दिस इज स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 1:28:16। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने, मैं हूँ आपके साथ अंजू।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

तुम मानो या ना मानो, पर तुम पर हक सिर्फ मेरा ही है। तुम मानो या ना मानो, पर तुम पर हक सिर्फ मेरा ही है, क्योंकि तुमसे ही शुरू होती है मेरी दुनिया और तुम्ही पर शुरू होता है मेरा सवेरा।

पहली बार देखा तो खो गए, बस एक पल में ही तुम्हारे हो गए। दिल ने धड़कना तुमसे ही सीखा, तुम मिले और हम मुकम्मल हो गए।

सुनी पड़ी है राहें और उदास है आंगन, अब तो घर आ जाओ, तरस रहा है मन। दीवारों को भी अब तुम्हारी याद सताती है, हवा भी आकर बस तुम्हारा ही पता पूछती है।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: इस तरफ मुस्कुराके मुझे लूट लो, मेरे नजदीक आके मुझे लूट लो, मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम् यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वो जल्दबाजी में बुआई ना करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर ने नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की आलोचना की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Naam campaign. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnership should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders, including Canadian Prime Minister Mark Carney, British Prime Minister Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the G7 summit. Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his talks with British Prime Minister Keir Starmer, Mr. Modi said the past year had been outstanding for India-UK relations. In a social media post, he said the trade deal between the two countries has opened several new avenues for economic cooperation. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In a social media post, Mr. Modi said the two leaders discussed India-UAE cooperation across various sectors and explored ways to further strengthen the comprehensive strategic partnership. Prime Minister Modi also met President of Kenya, William Ruto. Mr. Modi said that India and Kenya share a long-standing partnership anchored in the aspirations of the Global South. He reiterated that both India and Kenya remain committed to working together for the well-being of the people. Prime Minister Modi also met Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. Prime Minister Modi reaffirmed that India deeply values its long-standing friendship with Egypt. Mr. Modi also met Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Prime Minister Modi emphasized that India and Japan will continue to deepen ties in diverse sectors with a priority on trade and investment. He also met South Korean President Lee Jae-myung. He said that both the nations are working together in trade, commerce and many other futuristic sectors. Today, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. UN and Home Minister Amit Shah yesterday chaired a review meeting on the rehabilitation of slums in New Delhi. During the meeting, Mr. Shah said the Delhi slum and JJ Cluster Rehabilitation and Relocation Policy 2026 has been finalized and directed the Delhi government to notify it at the earliest. He instructed the Delhi Development Authority and the Delhi Urban Shelter Improvement Board to issue tenders for the rehabilitation of 5 clusters under the public-private partnership mode within 45 days. He also directed authorities to prepare project documents and tender forms for 50 additional JJ clusters. India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for today. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है कार्यक्रम रात सुरमई का और स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि रात के 2:11:19 हो चुके हैं। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम रात सुरमई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बस यूं ही आंखें चार हुई थी उनसे, बस यूं ही आंखें चार हुई थी उनसे। क्या पता था कि इसी को लोग मोहब्बत कहते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तेरी यादों के साए में कट रही है ये जिंदगी, तेरी यादों के साए में कट रही है ये जिंदगी। हम तो आज भी खड़े हैं उसी मोड़ पर तेरे इंतजार में।

क्या बताऊं तुम्हें कि ये मोहब्बत कितनी गहरी है तुमसे, क्या बताऊं तुम्हें कि ये मोहब्बत कितनी गहरी है तुमसे, बस बस इतना समझ लो कि सांसों की टूर बस तुम तक ही ठहरी है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का सफर आपके साथ रहेंगी अर्चना बिसारिया, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूंगी, नमस्कार, शुभ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इसमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में NCR के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और नियमित कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस राघु. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Evian, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said, "This is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maa Ke Naam campaign." The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitaye, Sarvajan Sukhaye has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people, and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders including Canadian Prime Minister Mark Carney, British Prime Minister Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Al Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart, Mark Carney, welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his talks with British Prime Minister Keir Starmer, Mr. Modi said the past year had been outstanding for India-UK relations. In a social media post, he said, "The trade deal between the two countries has opened several new avenues for economic cooperation." Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in a social media post. Mr. Modi said the two leaders discussed India-UAE cooperation across various sectors and explored ways to further strengthen the comprehensive strategic partnership. Prime Minister Modi also met President of Kenya, William Ruto. Mr. Modi said that India and Kenya share a long-standing partnership anchored in the aspirations of the Global South. Reiterated that both India and Kenya remain committed to working together for the well-being of the people. Mr. Modi also met Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. Mr. Modi reaffirmed that India deeply values its long-standing friendship with Egypt. He also met Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Prime Minister Modi emphasized that India and Japan will continue to deepen ties in diverse sectors with a priority on trade and investment. He also met the South Korean President Lee Jae-myung. He said both nations are working together in trade, commerce and many other futuristic sectors. Today, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. Union Home Minister Amit Shah yesterday chaired a review meeting on the rehabilitation of slums in New Delhi. During the meeting, Mr. Shah said, "Delhi Slum and JJ Cluster Rehabilitation Relocation Policy 2026 has been finalized and directed the Delhi government to notify it at the earliest." He instructed the DDA and the Delhi Urban Shelter Improvement Board to issue tender for the rehabilitation of 5 clusters under the public-private partnership mode within 45 days. India Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for today. In the FIFA World Cup 2026, France began their campaign in style by defeating Senegal 3-1 in a Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. Senegal showed great resilience to begin the match. And that is the end of this news bulletin.

3:11 होने को है। दोस्तों, आपने इस वक्त ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि चलो आपको इस समय हिमालय की वादियों में ले चलते हूं। सुनने में शायद आपको कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन दोस्तों, संगीत एक ऐसा माध्यम है जहां मीलों की दूरी मिनटों में तय हो जाती है। जी हां दोस्तों, आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का वो गीत जिसे सुनते ही आंखों में आपको नजर आएंगे बर्फीले पहाड़, घाटी और सेबों के बागान, बादलों के बीच मुस्कुराते चेहरे। ये वही गीत है जो फिल्मों में उस पुराने जमाने की खुशबू लेकर आपके सामने आ जाते हैं। यकीन के साथ कह सकती हूं कि ये गीत आपको भी ताजगी से भर देगा, और अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो खुद ही सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कहते हैं प्यार का इजहार जब मासूमियत और सादगी के लफ्जों में ढल जाए तो वो सीधा दिल तक पहुंचता है। कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आया है फिल्म नाखुदा का ये बेहद खूबसूरत नगमा, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। ये सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं बल्कि उन अनकहे जज्बातों की मीठी दस्तक है जो किसी खास के आने से पूरी दुनिया को और भी हसीन बना देती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों 3:30 हुए हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों कुछ आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाती हैं, और जब मोहब्बत का एहसास उन आंखों में छलकने लगे तो शब्दों की जरूरत ही कहां रह जाती है। ऐसी ही एक दिलकश भावनाओं से सजा है फिल्म धनवान का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जब प्यार दिल में उतरता है तो तारीफ भी शायरी बन जाती है और हर मुस्कान किसी गीत का मुखड़ा। फिल्म धर्मात्मा का ये सदाबहार नगमा भी कुछ ऐसे ही मीठे एहसासों को अपने साथ लेकर आया है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में इस गीत को हर दौर के श्रोताओं ने अपना चहेता बना लिया है। ये गीत खूबसूरत भावना का उत्सव है, जब किसी अपने की मौजूदगी जिंदगी को और भी रंगीन बना देती है।

दोस्तों, प्यार की सबसे प्यारी बात यही है कि वो बिना किसी शोर के चुपके से दिलों को एक ऐसे बंधन में बांध देता है जिसकी डोर विश्वास, अपनापन और मधुर एहसासों से बनी होती है। फिल्म धरती का ही पुकार की ये ऐसा ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मोहब्बत की दुनिया में कुछ बातें अल्फाजों से नहीं बल्कि खामोशियों से कही जाती है। कभी निगाहें बोलती हैं, कभी धड़कनें और कभी दिल की खामोश आवाजें। आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म फासले से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

दोस्तों, प्यार की कहानियां हर दौर में लिखी जाती हैं, लेकिन हर प्रेम कहानी का अपना एक रंग, अपना एक अंदाज होता है। और बात जब दिलों की हो तो वो बात गीतों में ढल जाए तो वो कहानी हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। कुछ इस तरह

दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में कभी कभी एक पुकार ही काफी होती है, दिल से निकली हुई एक आवाज जो सीधे किसी अपने के दिल तक पहुंच जाती है। और जब इस एहसास को सुरों का साथ मिलता है तो एक ऐसा नगमा जन्म लेता है जो बरसों बाद भी उतना ही ताजा लगता है। कुछ ऐसा ही है प्रोफेसर फिल्म के इस गीत में, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों, प्रेम केवल आज का नहीं होता, ये समय की सीमाओं से परे एक ऐसा एहसास है जो जन्म जन्मांतर तक दिलों को जोड़ने का विश्वास देता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से गहरे जुड़ जाती हैं, तो मिलन की कहानी केवल एक जीवन की नहीं रह जाती। इसी भाव को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है फिल्म मिलन के इस गीत ने, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Evian, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people, and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with the world leaders, including Canadian Prime Minister Mark Carney, British Prime Minister Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of G7 summit. Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his talks with British Prime Minister Keir Starmer, Mr. Modi said, "The past year had been outstanding for India-UK relations." In a social media post, he said, "The trade deal between the two countries has opened several new avenues for economic cooperation." Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In a social media post, Mr. Modi said, "The two leaders discussed India-UAE cooperation across various sectors and explored ways to further strengthen the comprehensive strategic partnership." Mr. Modi also met President of Kenya William Ruto. Mr. Modi said that India and Kenya share a long-standing partnership anchored in the aspirations of the Global South. He reiterated that both India and Kenya remain committed to working together for the well-being of the people. Prime Minister Modi also met Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. He reaffirmed that India deeply values its long-standing friendship with Egypt. Mr. Modi also met Japanese Prime Minister Sane Takayuki. He emphasized that India and Japan will continue to deepen ties in diverse sectors with a priority on trade and investment. Prime Minister Modi also met South Korean President Lee Jae-myung. He said that both nations are working together in trade

4:10:57 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप लोगों ने ट्यून किया हुआ है। और दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम अरुणिमा का, और आज इस अरुणिमा कार्यक्रम को पेश कर रही हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। एक बार फिर से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के सफर में ऐसे भी पल आते हैं जब राहें धुंधली लगने लगती हैं और मन को किसी सहारे, किसी विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि आशा और विश्वास ही वो दीपक है जो अंधेरों में भी मंजिल का रास्ता दिखाते हैं। आपको सुनवाते हैं सुबह फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करता, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में उम्मीद और विश्वास का होना कितना जरूरी है। जब हम अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं, जब परिस्थितियां कठिन होने पर भी मन में आशा की लौ जलाए रखते हैं, तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।

दोस्तों, प्यार सिर्फ दो रिश्तों के बीच का रिश्ता नहीं होता, बस बल्कि जीवन को खूबसूरती जीने का एक नजरिया भी है। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है, अपने सपनों से प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है, वही जीवन के हर रंग को खुलकर महसूस कर पाता है। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये खूबसूरत संगीत, आवाज मुकेश और लता मंगेशकर की है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी चुनौतियों की छांव। लेकिन इस बदलते मौसम के बीच अगर कोई चीज हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है तो वो है एक मुस्कान और सकारात्मक सोच। आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक गीत जिसे गाया है जगजीत सिंह ने। ये गीत हमें यही संदेश देता है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, जीवन से प्यार करना और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना ही हमारी असली जीत है। क्योंकि मुस्कुराहट केवल हमारे चेहरे की पहचान नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास और उम्मीद का आईना भी होती है।

4:34 और 24 सेकेंड हुए हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, जीवन की चुनौतियों से दूर भाग जाना कभी समाधान नहीं होता। असली साहस तो परिस्थितियों का सामना करने में ही है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं।

जिंदगी के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब मन सवालों से भर जाता है। कभी हालात समझ नहीं आते, कभी किस्मत की उलझनें हमें परेशान करती हैं। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच इंसान अपने भीतर झांकना भी सीखता है और जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश भी करता है।

जी हाँ दोस्तों, जहां उलझने होंगी वहां समाधान भी जरूर निकलेगा। दोस्तों, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जीवन का सफर चलता रहता है। कभी परिस्थितियां हमारे परीक्षा लेती हैं, तो कभी अनुभव हमें नई समझ देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, विश्वास और धैर्य बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।

कहते हैं जीवन की खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और प्रेम सहानुभूति तथा सद्भाव से जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। जब हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाशना सीख जाते हैं तब जीवन का हर पल और अधिक अर्थपूर्ण होता है। सफलता केवल ऊंचाइयां छूने में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष पाने में भी है, और ये संतोष हमें मिलता है सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और रिश्तों में अपनापन बनाए रखने से। तो आइए जीवन के इसी सुंदर संदेश को अपने दिल में उतारते हुए सुनते हैं आशा की भोसले की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी का दूसरा नाम ही है चलते रहना। राह में कभी खुशियां मिलेंगी, कभी मुश्किलें, तो कभी सफलता साथ देगी तो कभी असफलता। कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ने की ये सब चीजें हमें प्रेरणा देती रहेंगी। लेकिन जो रुक गया वो मंजिल से दूर हो गया, और जो चलता रहा उसने एक दिन अपने सपनों को साकार कर दिया। आज अरुणिमा कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, आप ये गीत जरूर सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप आई मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। वहीं लॉस एंजलिस में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। मियामी में उरुग्वे और सऊदी अरब ने 1-1 से ड्रॉ खेला, जबकि सेटल में खेले गए ग्रुप जी मुकाबले में बेल्जियम और मिस्र की टीमें भी 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The French city of Evian remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with the EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G7 summit in Evian, France, holding bilateral meetings with leaders from several countries. The Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit and underscored the importance of dialogue, diplomacy and respect for international law, sovereignty and territorial integrity in advancing enduring peace, security and stability in the West Asia region. Prime Minister Modi also met Kenyan President William Ruto. Mr. Modi said India and Kenya share a long-standing partnership anchored in the aspirations of the Global South. During his meeting with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, Mr. Modi emphasized that India and Japan will continue to deepen ties across diverse sectors. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Evian, France yesterday. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance Mission Life and the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures including contact tracing, border surveillance and community engagement. The G7 further reaffirmed its commitment to accelerating the global fight against cancer, supported by partner countries, including India and Brazil. The leaders stressed the importance of prevention, early diagnosis and access to quality healthcare. In the FIFA World Cup 2026, France began their campaign in style by defeating Senegal 3-1 in a Group 1 clash at New Jersey in the United States last night. Senegal showed great resilience to begin the match. They did not let France penetrate till the 66th minute, however, Kylian Mbappe starred with a brace, including a goal that saw him become France's all-time top scorer, while Bradley Barcola added the second to put the game beyond the reach late on. And that is the end of this news bulletin.

सुबह के 5:11 होने को हैं दोस्तों। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सावन की घटा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।